0: हर हर मन बुठा।
1: श्लोक नानक फिक्के बोले तन मन विका होए, फिक्को फिका सुदिए।

मिल गोपाल गोविंद ना कबूल झोरिए देह दस मन चाओ न जाए सूर्य देह दस मन चाओ।

साध बाते रे बिठे हम में कोई ना साध बिन साध ना दिसे जग विच कोआ रहो संत हो टोर।

चक्रमान सद्गुरु मिले। एक ने जाके पक्षम जाए नानक सेव कर दिए किसे भी हम समाए हरता के मारा बाप।